कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोड़ रहा था। कंकर भला देते नहीं आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
6: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: जी लिस्नर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम सलाम।
1: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
2: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी को जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो लीक है। बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है, और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
1: हम सिर से उनका पैगाम लेंगे, हजरत इलामा इकबाल का योम पैदाइश है, उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का योम पैदाइश है, जिनके तस्वुर की बुनियाद पर ये मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन अहम है, और हमारी की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझे, बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. That's all.

0: 3549 Other Branch या Mughal Emporium 1304 Leeds Road Bradford 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम 88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।

0: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
5: or Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह को जी चाह रहा है
10: खुलकर क्यों नहीं कहती कि बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश

0: फूड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए, लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑटोमेटिक

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77
10: मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू।

0: अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444. Or donate online at ikca.ashlist.com/cancer-hospital is being in Karachi. With your support more than ever now, please donate today by 01274 424 triple or donate online.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford,
10: 01274201679। UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677.
11: Do you want to do something? Please.
12: What do?

0: Hey, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Jo mile hayat-e khizar mujhe, to use main harfe sana karu. جو ملے حیات خضر مجھے تو اسے میں حرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرے لطف کی کوئی حد نہیں، گنوں کس طرح کے عدد نہیں، نہیں کوئی تیرے سوا میرا، کسے یاد تیرے سوا کروں، تیرے در پہ خم ہے یہ سر میرا، تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، جو ملے حیات خضر مجھے تو اسے میں حرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرے لطف کی کوئی حد نہیں گنوں کس طرح کے عدد، نہیں نہیں کوئی تیرے سوا میرا کسے یاد تیرے سوا کروں، تیرے در پہ خم ہے یہ سر میرا تیری رحمتوں پہ گزر میرا، میں کہا کروں تو سنا کرے تو دیا کرے میں لیا کروں۔ معزز سامعین کرام، ہیلو اینڈ السلام علیکم، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے، ہمارا ویب سائٹ کا پتہ ہے www.bradfordasianradio۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، یہی نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے، ہمارا ویب سائٹ

से 24 घंटे आप लुत्फंदोज हो सकते हैं। सामीन कराम, हस्ब मामूल हस्ब वादा आपसे मुखातिब आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा यहाँ मौजूद हैं हम, और हमेशा की तरह पुरुमीद और दुआगो कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं, शादो आबाद हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ हैं। समीन कराम, एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके लिए हाजिर खिदमत है, और आज के प्रोग्राम की जो तरतीब व तफसील है उससे भी आपको आगाह करते चलें। जी हाँ, आज का इंतखाब हमेशा की तरह खूबसूरत से चंद गीत आपकी डेडिकेशंस के साथ पेश किए जाएंगे, या फिर कोई आपकी फरमाइश है उसको पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा समीन कराम क्या होगा, जी हाँ, आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए हम अपने प्रोग्राम में शेर व शायरी जो है वो शामिल रखते हैं। तो आज जो सोमवार का प्रोग्राम होता है उसमें हम मुतफर्रक शौरा का मुंतखब कलाम जो है वो आपके गोश गुजार करते हैं, और कोशिश ये होती है कि जितने भी नए शौरा हजरात हैं ना उनका कलाम पेश किया जाए। जी हाँ, पुरानों को हम भूलते नहीं हैं, उनका भी शामिल होता है कलाम, कम कम, ज़्यादातर जो नए शोरा हजरात हैं, जो हमें असल बात यह है कि सच बताएं आपको, जो कलाम पढ़ के दिल को अच्छा लगता है, समझ में आता है, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। और जो कल का प्रोग्राम होगा यानी बरोज़ मंगल, उसमें हम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी शेर व शायरी जो है वो अपने प्रोग्राम में सिर्फ शामिल रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में शेर व शायरी शामिल है, मुतफर्रक शौरा का मुंतखब कलाम आप सुन पाएंगे, बहुत खूबसूरत सी गज़लें हैं, कुछ नज़में हैं, सुनिएगा तो आपको भी भली लगेंगी। इसके अलावा सामीन कराम क्या होता है, जी हाँ, तारीख़ के औराक को हम उलटते पलटते रहते हैं, और उसमें से कोई ना कोई एक तारीखी वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं हर प्रोग्राम में सोमवार को। तो आज के प्रोग्राम में भी आज का तारीखी वाक़या शामिल है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप सुनेंगे या तीसरे हिस्से में वो आपको सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ सामीन कराम क्या होता है, जी हाँ, एक और चीज़ हम प्रोग्राम में शामिल रखते हैं, जनाब अशफाक अहमद साहब का जाविया, अशफाक अहमद साहब का जाविया वो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल रखते हैं। आज का जो जाविया है ना उनका, वो बड़ा मज़े का है, थोड़ा सा लाइट मूड में लिखा उन्होंने या कहा उन्होंने, और उसका उन्वान भी ऐसा ही है कि बोंगिया मारिए खुश रहें, बोंगिया मारें खुश रहें, ये आज के चैप्टर का, आज के बाब का उन्वान है। ज़रूर आप कीजिएगा, सुनिएगा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबके पते की बातें होती हैं और अच्छी बातें होती हैं, तो जाविया भी आज के प्रोग्राम में शामिल है, हमेशा की तरह उसका भी इंतखाब है। साथ ही साथ सामीन कराम, आज की छोटी सी खास बात के उन्वान से कोई अच्छी सी खास बात, छोटी सी जो अच्छी लगे, जिससे सबक मिलता हो, अकवाले ज़री कह लीजिए, उन्हें सुनहरे हरूफ कह लीजिए, बुज़ुर्गों के अकवाल हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं। और बातें तो होती ही रहती हैं, कोई ना कोई बात अगर जहन में ऐसी आ जाए ज़रूर आपके साथ फिर हम शेयर करते हैं, और या फिर आप ऐसी कोई बात कर देते हैं, हमारे कॉलर्स जो हैं, हमारे लिसनर्स, तो उस पर अगर हम समझते हैं कि जी हाँ बड़ी अहम बात है ये और इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो फिर उसको हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। ये है सामीन कराम आज के प्रोग्राम की तरतीब व तफसील। और प्रोग्राम में शामिल आप कैसे हो सकते हैं, जी हाँ, बहुत आसान सा तरीका, हमारा बड़ा आसान सा नंबर 01274306677 01274306677, इस नंबर के जरिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइंस आर ओपन फॉर यू, आप आ सकते हैं अपनी फरमाइश, अपनी डेडिकेशन के लिए, या फिर प्रोग्राम के बारे में कोई आरा है, तजावीज़ हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। लाइंस आपके लिए खुली हैं पूरे तकरीबन 2.5 घंटे, तो आप जिस वक्त भी आप फुर्सत मिले, फारिग हों, आप ज़रूर शामिल हो जाइए, अपनी फीडबैक दीजिए, अपनी आरा का इजहार कीजिए, या फिर कोई अच्छा सा गीत सुनना चाहते हैं हमें बताइए, ज़रूर हम आपको ज़रूर जो है वो गीत यहाँ पे मिल गया तो ज़रूर आपके लिए उसे पेश करेंगे। तो सामीन कराम, प्रोग्राम का पहला गीत जो है आप तमाम सुनने वालों के नाम जो ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

0: Authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर,
8: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: जी सामिने कराम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात आप समाप्त फरमा रहे हैं 1413 AM पे ऑनलाइन, और साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक। और सामिने कराम, क्या खूबसूरत हुस्न तफाक है, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बात अभी हम कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में, ब्रेक से पहले, जिंदगी की, कि जिंदगी जो है ना, ये 4 दिन की जिंदगी है, इसने ख़त्म हो जाना है, ये जाविदा जिंदगी नहीं है, अगली जो जिंदगी है मौत के बाद वो हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो जब सबसे पहले हमने सोचा कि क्या आपको शायरी सुनाई जाए, तो जो कलाम हमारे सामने आया तबस्सुम आफरीदी का, जरा गौर से सुनिएगा और सोचिएगा, आप बल्कि मजबूर हो जाएंगे इस बात पे, हमसे मुत्तफिक होने पे, कि जो बात हमने कही थी प्रोग्राम के आगाज में, वही ये जो गजल है ये उसके मुताबिक है, बिल्कुल उसको सेकंड कह लीजिए, करती है, लिखती है, मौत की जानिब रवा है जिंदगी, मौत की जानिब रवा है जिंदगी, है गलत कि जाविदा है जिंदगी। हम फकत ये सोचते ही रह गए, हम फकत ये सोचते ही रह गए, थी कहाँ पर और कहाँ है जिंदगी, सांस लेने तक ही सारा खेल है, सांस लेने तक ही सारा खेल है, फिर तो शहरे खामशा है जिंदगी। इस जमीन व आसमां के दरमिया, इस जमीनों आसमां के दरमिया, गर्दिश पहम रवा है जिंदगी, मुस्कुरा लेने की फुर्सत कम से कम, मुस्कुरा लेने की फुर्सत कम से कम, तर हकीकत ایک فغا ہے زندگی. کام اپنی ذات سے لیتے نہیں, کام اپنی ذات سے لیتے نہیں, پوچھتے ہیں پھر کہاں ہے زندگی. چاند تاروں کی چمک افلاک پر, چاند تاروں کی چمک افلاک پر, اور زمین پر ایک دھواں ہے زندگی. موت کی جانب رواں ہے زندگی, ہے غلط کہ جاویداں ہے زندگی. ہم فقط یہ سوچتے ہی رہ گئے تھی کہاں پر اور کہاں ہے زندگی. سانس لینے تک ہی سارا کھیل ہے, پھر تو شہر خامشاں ہے زندگی. اس زمین و آسماں کے درمیان گردش پہم رواں ہے زندگی. مسکرا لینے کی فرصت کم سے کم در حقیقت ایک فغا ہے زندگی. کام اپنی ذات سے لیتے نہیں, پوچھتے ہیں پھر کہاں ہے زندگی. چاند تاروں کی چمک افلاک پر اور زمین پر ایک دھواں ہے زندگی. کیا خوبصورت سی یہ زمین کرام انہوں نے زندگی کے حوالے سے تبسم آفریدی نے غزل لکھی یا نظم کہہ لیجئے, بہت زبردست. سمیرہ صاحبہ, آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا. تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئیں ہمیشہ کی طرح. ماشاءاللہ سے ہمیشہ آپ شامل ہوتی ہیں پروگرام میں جب بھی آپ سنتی ہیں. تو سمیرہ صاحبہ, آپ نے کہا جی اچھا سرفی کا ایک گیت لگا دیجیے, تو لیجئے یہ آنے والا جو خوبصورت سا گیت ہے نا سمیرہ صاحبہ, خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے. اقبال صاحب, آپ تشریف لائے پروگرام میں, بہت شکریہ, بہت نوازش. آفتاب صاحب, آپ نے بھی فون کیا, بہت شکریہ, آپ کا بھی تہے دل سے مشکور و ممنون. آپ کے لیے بات ہوگی آپ لوگوں کے حوالے سے بعد میں. فی الحال سمیرہ صاحبہ کا خوبصورت سا گیت ان کے لیے.

0: जी हाँ साबिने कराम, हर गीत जो है उसमें भी एक सबक छुपा होता है अगर इंसान गौर करे, फिक्र करे उसके बारे में। ये भी यही कह रहे थे किशोर कुमार, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो इसलिए बेहतर है कि जो आज का वक्त है उसे तो हंसी खुशी अच्छे से गुजारना चाहिए, ताकि आने वाला कल मजीद बेहतर हो, अच्छा हो अगर है तो। तो बहरहाल इकबाल साहब, आपसे माजरत है। माजरत किस लिए कि जी इसमें आपके चहेते जो अमिताभ बच्चन हैं वो नहीं थे, पर्दे पे नजर कौन आए वो दूसरे अदाकार थे। माजरत चाहते हैं इस हवाले से। और ये जो आने वाला गीत है इसमें डेफिनेटली हमने चेक कर लिया कि अमिताभ बच्चन ही क्या फिल्म का गीत है, उन पे ही फिल्माया गया है, और है किशोर कुमार ही की आवाज़ में, लेकिन अमिताभ बच्चन हैं पर्दे पर नज़र आते हैं। और इकबाल साहब, आपने इत्तला दी, बताया कि जी अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो इस संडे को, दिस कमिंग संडे ही इज़ गोइंग टू बी 84 ईयर्स ओल्ड, 84 साल के वो हो रहे हैं आपने बताया, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उनको और लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत अता फरमाए, अच्छी अच्छी और वो फिल्में अपने जो हैं फैंस उनको देते रहें। बहुत अच्छे अदाकार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। लीजिए अब ये गीत हम आपको सुनाते हैं, और याद रखिएगा कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अशफाक अहमद साहब का जाविया भी आपके गोश गुजार हम करेंगे, आप सुनेंगे। जरका साहिबा बहुत माजरत, वो बाज़ोकात लाइन ऐसे ड्रॉप हो जाती है, हमने कॉल तो ली आपकी लेकिन बात नहीं हो पाई, हम उसके लिए बहुत माजरत खा हैं। गुजारिश ये है कि अब ये गीत लगाते हैं तो फिर आप 01274-306677 दोबारा नंबर डायल कीजिएगा ब्लड फेडरेशन रेडियो का, तो फिर हमारी आपसे बात भी हो पाएगी और आपकी फरमाइश भी हम ले लेंगे। तो ज़रूर आपकी कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा, और माजरत खा हैं कि पहले आपने काफ़ी दफ़ा कोशिश की लेकिन लाइन जो है वो गो थ्रू नहीं हुई, लेकिन अब फिर गुजारिश है कि एक मरतबा कोशिश कर लीजिए। और लीजिए सामीने कराम, उस दौरान ये खूबसूरत सा गीत आप तमाम सुनने वालों के लिए, खसूसन इकबाल साहब आपके लिए।
1: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने के खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था, मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने है, अगर आप बचा सकते हैं तो।

0: जी हाँ इकबाल साहब, आप खुश हो गए। जी हाँ, हमने अमिताभ बच्चन की, आपने बताया था कि सालगिरह भी है, तो इसलिए हमने उनके डायलॉग्स भी जो थे वो भी पेश कर दिए। ठीक है ना आपके लिए, और आप बहुत खुश हो गए सुन के। यकीनन अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े अदाकार, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। हकीकतन जो है वो बॉलीवुड के कह लीजिए कि सुपरस्टार हैं। तो उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश, प्रोग्राम में आप दोबारा शामिल हुए। इकबाल साहब, आफताब साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी भी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो प्रोग्राम का आने वाला गीत होगा वो हम आपके नाम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप उसे पसंद करेंगे। जरका साहिबा, आपकी कॉल के मुंतजर हैं हम, क्योंकि आपने आई थिंक काफ़ी दफ़ा ट्राई की लेकिन कॉल गो थ्रू नहीं हुई। अभी आपसे गुजारिश है कि अब जब कमर्शियल ब्रेक का चूंकि वक्त करीब है, आप कमर्शियल ब्रेक के दौरान जब कॉल करेंगी तो लाजिमन आपकी कॉल अटेंड की जाएगी। और याद रखिएगा कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सामीन कराम अशफाक अहमद साहब, जो उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, उनका जाविया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका उनवान भी बड़ा दिलचस्प है और वो जाविया नज़र भी बहुत दिलचस्प है। वो है बोंगिया मारे खुश रहें। अब ये बोंगियाँ क्या होती हैं, या पूरा जब सुनेंगे जाविया तो आपकी समझ में आ जाएगा। बोंगिया मारें और खुश रहें तो ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल चलते हैं हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने।
1: नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
0: 400 gul the yahan khar nahi the pehle. 400 gul the यहाँ खार नहीं थे पहले, लोग एक दूजे से बेजार नहीं थे पहले, जीस्त पहले भी कहाँ रास थी हमको लेकिन, जीस्त पहले भी कहाँ रास थी हमको लेकिन, इतनी तकलीफ से दो चार नहीं थे पहले, मेरी गुर्बत का नतीजा है या मसरूफ हैं वो, मेरी गुर्बत का नतीजा है या मसरूफ हैं वो, इस कदर दूर मेरे यार नहीं थे पहले, कितनी कीमत पे बिके हो जरा मालूम तो हो, कितनी कीमत पे बिके हो जरा मालूम तो हो, तुम तो जालिम के तरफदार नहीं थे पहले, तू मिला है तो तखय्युल के सहीफे उतरे, तू मिला है तो तखय्युल के सहीफे उतरे, इतने अच्छे मेरे अशआर नहीं थे पहले, तुम कहाँ मिस्र के बाजार में आ बैठे हो, तुम कहाँ मिस्र के बाजार में आ बैठे हो, तुम तो यूसुफ के खरीदार नहीं थे पहले, मैं कबीले में बहुत देर के बाद आया हूँ, मैं कबीले में बहुत देर के बाद आया हूँ, अब जो सरदार हैं सरदार नहीं थे पहले, झूठ भी हस्बे ज़रूरत ही कहा जाता था, झूठ भी हस्बे ज़रूरत ही कहा जाता था, इतनी कसरत में रियाकार नहीं थे पहले, आजकल तुमने जिन्हें सर पे चढ़ा रखा है, आजकल तुमने जिन्हें सर पे चढ़ा रखा है, इस कहानी में ये किरदार नहीं थे पहले, तुमने क्या सोच के बदला है अकीदा अपना, तुमने क्या सोच के बदला है अकीदा अपना यार तुम लोग, तुमने क्या सोच के बदला है अकीदा अपना, तुमने क्या सोच के बदला है अकीदा अपना यार तुम लोग।

जी सामीन कराम, आखिरी शेर था कि तुमने क्या सोच के बदला है अकीदा अपना, यार तुम लोग आज़ादार नहीं थे पहले। तो ये खूबसूरत सी सामीन कराम गज़ल थी तफसीर अब्बास बाबर की, जो आपके हमने गोश गुजार की। समात फरमा रहे हैं इस वक्त आप ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात पहुंच रही हैं ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। इसके अलावा चंद इलाकों में प्लस डैप के जरिए ये नशियात आप तक पहुंचती हैं, और साथ ही साथ जो हमारा मोबाइल ऐप है, स्मार्ट ऐप, मोबाइल ऐप, उसके जरिए आप हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं। तो आप बस आराम से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, अपने जो फ़ोन है आपका, और आप हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं। मुखातिब है समीन कराम इस वक्त आपसे आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इंतखाब। तो अब सामीन कराम, इंतखाब में क्या वक्त हुआ चाहता है, अब तक उम्मीद करते हैं कि जो भी इंतखाब पेश किया गया, ख्वाब गीतों की शक्ल में था या शेर व शायरी, आप तक हमने पहुंचाई, या फिर कुछ बातें आपसे हुई, यकीनन आप उनसे महसूस हुए होंगे। और अब सामीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये वक्त होता है अशफाक अहमद साहब का, उनके जाविये का, वो हम उनका जाविया नज़र आप तक पहुंचाते हैं, एक बाब अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और ये इसलिए शामिल करते हैं कि इसमें बहुत पते की बातें होती हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं, जो कि सबके फ़ायदे के लिए हैं, जिसे कहते हैं ना रिफाए आमा, जिसे कहा जाता है। तो ये उस हवाले से ये चीज़ें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो हमारे गुजर चुके हैं दानिश्वर, दुनिया से बेशक चले गए, लेकिन उनका जो काम मौजूद है दुनिया में, ख्वा वो किताबी शक्ल में है, ख्वा वो कैसेट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो याद रखना चाहिए। क्योंकि जो कौमें अपने माजी को याद नहीं रखती, या अपने बुज़ुर्गों को अपने भुला देती हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो फिर वो भटक जाती हैं। तो एक छोटी सी कोशिश है उनको उन याद करने की। बड़े खूबसूरत ड्रामे भी लिखे उन्होंने, न सिर्फ उन्होंने किताबें लिखी, अफसाने लिखे उन्होंने, नॉवेल्स लिखे, ड्रामे बहुत खूबसूरत लिखे उन्होंने। तो आज का जो उनवान है सामीन कराम जाविये का, वो है बोंगिया मारे खुश रहें। बहुत दिलचस्प उनवान है, आप सुनिएगा। वो लिखते हैं, हम अहले जाविया की तरफ से आप सबको सलाम पहुंचे। आज के इस जाविये में मेरा कुछ संजीदा अंदाज इख्तियार करने को जी नहीं चाहता, बल्कि आज कुछ हल्की फुल्की सी बातें होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जिंदगी हल्की फुल्की बातों से ही इबारत है। हम इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कुछ संजीदा और गंभीर किस्म की बातें कर रहे थे, और मेरे जहन में ये लहर बार बार उठ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बहुत सी मुश्किल मनाजिर मौजूद हैं, जिनमें बहुत बड़ा हाथ उन ऊंचे पहाड़ों का भी है जो अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से हमको अता किए। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, उनमें से एक K2, वो पाकिस्तान में है। तो जिंदगी में सेहत जिस्मानी और सेहत रूहानी को बरकरार रखने के लिए इंसान जो है वो एक ही तरीका इलाज नहीं अपना सकता, बल्कि उसे मुख्तलिफ तरीके और ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एलोपैथिक इलाज है, हिकमत है, होम्योपैथिक का तरीका है, इसके अलावा चाइनीज़ का तरीका इलाज है, जिसमें वो सुबह सवेरे उठकर कुदरत से करंट हासिल करते हैं। हमने चाइना में देखा कि वो सुबह बाहर खड़े होकर हाथ हिलाते रहते हैं और कुदरती एनर्जी अपने अंदर समेटते हैं और अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। इस किस्म की बातें और चीज़ें हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों, बड़ों और बाबों ने भी सोची हैं, और उनकी इन बातों को जो मेरे जैसा आदमी भी चोरी चोरी सुनता और सीखता रहा। उनमें एक तरीका इलाज ये भी है कि वो रूहानी अद्वियात का इस्तेमाल रखते हैं। ख़वातीनों हज़रात, ये रूहानी अद्वियात कहीं फरोख्त नहीं होती, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना होना सा भी होने की तरह से है। मेरी और आपकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार वो यही है कि कोशिश और जिद्दोजहद करनी है, और यही हमें पढ़ाया और सिखाया गया। लेकिन चीनी फलसफा ताओ के मानने वाले कहते हैं कि ठोस और नज़र में आने वाली चीज़ और जो बज़ाहिर आपको मुफीद नज़र आए, वो दर हकीकत मुफीद नहीं होती। अब सामीन कराम, अगर आप हमें सुनते रहते हैं तो आपको इल्म है कि जो हमारा कल आने वाला प्रोग्राम है, यानी कि बरोज़ मंगल इसी वक्त के हिसाब से, तो क्या है कि उसमें हम आपको एक नावल सुनाते हैं, दस्तक ना दो, लिखा हुआ है अल्ताफ़ फ़ातिमा का, और वो इसी

0: चीनी फलसफा जो है बहुत बड़े फलसफी थे, ताऊ, ये उनके उनकी एक छोटी सी नज्म है दस्तक ना दो, जिसका तर्जुमा उर्दू में यानी किया गया, उसका मतलब है कि दस्तक ना दो, उसी नाम से वो नावल है और उसमें एक चीनी लड़के की दास्तान भी है, सफदर ल्यूचू, आपको हम सुनाते रहते हैं। तो अगर इत्तफाक हुआ तो कल आप इसी वक्त ज़रूर सुनिएगा, हमारा प्रोग्राम कल भी होता है 10 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक, तो आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे भी अशफाक अहमद साहब उसी ताऊ का जिक्र कर रहे हैं, उनके फलसफे का। आगे लिखते हैं जनाब अशफाक अहमद साहब के, मिसाल के तौर पर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, अपनी कार निकालते हैं, तेजी से सड़क पर इसे भगाते हैं, आपकी ये कोशिश और तेज भगाना एक साकिन चीज से वाबस्ता है। आप हैरान होंगे कि ये तेजी से घूमता हुआ पहिया एक नहायत साकिन धुर्रे के ऊपर काम करता है। अगर वो धुरा साकिन ना रहे और वो भी घूमने लग जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। इस कोशिश और जिद्दोजहद में तेजी से मसरूफ पहिए के पीछे मुकम्मल सुकून है और खामोशी और इस्तकामत और हरकत से मुकम्मल गुरेज है। मुझसे और आपसे ये कोताही हो जाती है कि हम तेज चलने के चक्कर में पीछे अपनी रूह की खामोशी और सुकून को तोड़ देते हैं। हमारे सियासतदान भी चलो भागो दौड़ो की रट लगाते हैं और आवे यावे जावे जावे के नारे लगाते हैं। जिंदगी अल्लाह की बनाई हुई है, उसने जिंदगी में हुस्न रखा है। मेरे सामने पड़ी चाय की प्याली के दरो दीवार, इसका कुंडा ये मुफीद नहीं है बल्कि इसका खला मुफीद है। हम प्याली के किनारे पर चाय रख कर नहीं पी सकते, इसलिए खला की अहमियत, वो जो गैप यानी होता है, उसकी नजर आने वाली बैरूनी खूबसूरती से ज्यादा है। हम जिस घर में रहते हैं वो घर के खला के अंदर रहते हैं, वरना सिर्फ दीवारें किसी काम की नहीं होती। आप जिंदगी के साथ शिद्दत के साथ ना चिमट जाया करें और हर मुफीद नजर आने वाली चीज को बिल्कुल ही मुफीद ना समझ लिया करें। मैं रूहानी दवा की बात कर रहा था जो आम किसी तबीब से नहीं मिलती या किसी मल्टीनेशनल लेबोरेटरी में भी तैयार नहीं होती। ये दवाएं आपको खुद ही बनाना पड़ती हैं और इनके साथ ऐसे ही चलना पड़ता है जैसे बेख्याली में आप किसी खुले रास्ते से फायदा उठाते हैं। इनका नुस्खा भी किसी जगह से लिखा हुआ नहीं मिलता। ये आपको अपनी जात के साथ बैठकर और खुद को एक तबीयत के सामने दो जानू होकर बैठने के अंदाज में पूछना पड़ता है कि बाबा जी ये मेरी खराबी है और ये मेरी उलझन। फिर आप ही के अंदर का वजूद या तबीब बताएगा कि आपको क्या करना है। जब आप खुद अपनी जात से अपनी खामियां खूबियां पूछने और सवाल जवाब करने बैठ जाते हैं तो मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां डिप्रेशन के मर्ज से परेशान हैं। करोड़ों रुपए की अद्वियात से डिप्रेशन खत्म करने की कोशिश की जाती है और ये मर्ज ऐसा है कि खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और अछूत की बीमारी लगता है। हमारे बाबे जिनका मैं जिक्र करता हूं वो भी इस स्ट्रेस या डिप्रेशन के मर्ज का इलाज ढूंढने में लगे हैं ताकि लोगों को इस मुझी मर्ज से निजात दिलाई जाए। परसों ही जब मैंने बाबा जी के सामने अपनी ये मुश्किल पेश की तो उन्होंने कहा कि क्या आप डिप्रेशन के मरीज को इस बात पर माइल कर सकते हैं कि वो दिन में एक आध दफा भोंगियां मार लिया करे, यानी ऐसी बातें करे जिनका मतलब और माने कुछ ना हो। जब हम बचपन में गांव में रहते थे और जौहर के किनारे जाते थे, उस वक्त मैं चौथी जमात में पढ़ता था, उस वक्त भी पॉप म्यूजिक आजकल के पॉप म्यूजिक से बहुत तेज था और हम पॉप म्यूजिक या गाने के अंदाज में ये तेज तेज गाते थे, मोर पावे पैल सप जावे खुडनु बगला भगत चुक ले आवे डडुनु ते डडियां दियां लिखियां नु कौन मोरदा, यानी मोर नाचता है जबकि सांप अपने सुराख या गड्ढे में जाता है, बगला मेंढक को खुराक के लिए उचक कर ले आता है और इस तरह सब अपनी अपनी फितरत पर कायम है और मेंढक की किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। हमको जमाने के इस कदर संजीदा और सख्त कर दिया है जमाने ने कि हम बोंगी मारने से भी कासिर हैं। हमें इस कदर तशन्नुज में मुब्तला कर दिया कि हम बोंगी नहीं मार सकते, बाकी अमूर्त दूर की बात है। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, देखें आपको 24 घंटों में कोई वक्त ऐसा नहीं मिलेगा जब आपने बोंगी मारने की कोशिश की हो। देखिए लतीफा और बात है, वो बाकायदा सोच समझकर मौके की मुनासबत से सुनाया जाता है, जबकि बोंगी किसी भी वक्त मारी जा सकती है। रूहानी अद्वियात उस वक्त बननी शुरू होती हैं जब आपके अंदर मासूमियत का एक हल्का सा नुक्ता मौजूद होता है। ये आम सी चीज है, चाहे सोच लगाकर या जोर लगाकर ही लाई जाए। खूबसूरत है, अलामा इकबाल फरमाते हैं, बेहतर है दिल के पास रहे पासेबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। तो सूफियाए कराम बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान आखरत में पहुंचेगा उस वक्त एक लंबी कतार लगी होगी, अल्लाह ताला वहां मौजूद होंगे, वो आदमी से कहेंगे, ऐ बंदे मैंने तुझे जो मासूमियत देकर दुनिया में भेजा था वो वापस दे दे और जन्नत में चला जा। जिस तरह गेट पास होते हैं ना, तो अल्लाह ये बात हर शख्स से पूछेगा, लेकिन हम कहेंगे कि या अल्लाह हमने तो MPhil, LL BBB या PhD या MPhil या MA बड़ी मुश्किल से पास किया, लेकिन हमारे पास वो मासूमियत नहीं है। लेकिन ख्वातीनों हजरात, रूहानी दवा में मासूमियत वो अज़ाए तरकीबी या नुस्खा है, जिसका घोटा लगेगा तो रूहानी दवा तैयार होगी, और इस नुस्खे में बस थोड़ी सी मासूमियत दरकार है। इस दवाई को बनाने के लिए डब्बे बोतलें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि जब आप रूहानी दवा बनाएं तो सबसे पहले एक थैली बनाएं जिसके अंदर 3 नीले मनके या जो भी आपकी पसंद का रंग है उसके मनके और आला दर्जे की कौड़ियां, एक तितली का पर, अगर तितली का पर ना मिले तो काले कीकर का फल, कोई छोटी सी आपकी पसंद की तस्वीर, छोटे साइज में सूराए रहमान और उसके अंदर एक कम से कम 31 दानों या मनकों वाली तस्वीर होनी चाहिए। इस थैली में एक लेमन ड्रॉप होना चाहिए, एक सीटी और एक पुराना बल्ब भी रखें, फिर आप लौटकर मासूमियत की तरफ आएंगे। देखिए, ये मेरी पसंद की चीजों पर मबनी थैली है, आप अपनी पसंद पर मबनी चीजों को अपनी थैली में रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये थैली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम मासूमियत से इतने दूर निकल गए हैं, इस कदर समझदार और चालाक हो गए हैं कि अल्लाह ने जो नेमत हमें देकर पैदा किया था हम उससे आज तक फायदा ही नहीं उठा सके। अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूं, रिस्क मैं दूंगा, इज्जत शोहरत तुम्हें मैं दूंगा, औलाद से मैं नवाजूंगा, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो खुद बड़े अकलमंद आदमी हैं, ये सारी चीजें हम अपनी अकलमंदी से पा सकते हैं, और इसी जोम में तशन्नुज की जिंदगी में मुबतला है। मेरा छोटा पोता अवैस स्कूल में पढ़ता है, एक दिन स्कूल से आया तो बड़ा परेशान था और घबराया हुआ भी, और अपनी माँ से कहा कि मामा आज स्कूल में खेलते हुए मेरी कमीज का बटन टूट गया, मैंने अपना बटन तो तलाश कर लिया लेकिन मुझे वो धागा नहीं मिला जिससे ये लगा हुआ था। अब आप अंदाजा करें कि हम अपने बच्चों को किस इंतहा दर्जे की और परेशान कुन जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा बटन जब गिरता है ना तो उसके साथ धागा नहीं गिरता। उसकी माँ हंसने लगी कि देखो कितना बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं, ये कितना बेवकूफ नहीं बल्कि कितना मासूम है, हम कितना भी बच्चों को सिखा लें लेकिन उनसे कुदरती मासूमियत तो जाते जाते ही जाएगी ना। ख्वातीनों हजरात, इस मासूमियत को हमें वापस लाना है, जब तक हमें वो नहीं मिलेगी हम अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। आपने जो थैली बनाई है इसे आपने हफ्ते में 2-3 मरतबा खोल कर भी देखना है, अगर उसे नहीं देखेंगे तो आपकी मुश्किलात दूर नहीं होंगी। ये मासूमियत की थैली आपको सुकून फराहम करेगी, आपकी मासूमियत लौटाएगी। ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए रस्सी दरकार होती है, सिर्फ पैदल चलकर माउंट एवरेस्ट सर नहीं किया जा सकता। मेरी खालाजाद भाई की एक बेटी जो मेरी भतीजी भी लगती है उसकी शादी थी, और रुखसती के वक्त हमारी वो बेटी सबसे मिल रही थी, अपने बाप से भी बड़ी मोहब्बत से जप्फी डाल के मिली, फिर उसने पर्स में से कुछ निकाला और वो निकाली हुई पुड़िया सी अपने वालिद को दे दी। उसके बाद जब वो मुझे मिलने लगी तो मैंने कहा बेटा तूने पर्स से निकालकर अपने बाप को क्या दिया था? वो कहने लगी ताया कुछ नहीं था। मैंने कहा कि मेरी आंखों ने कुछ देखा है? तो वो कहने लगी कि ताया जान मैंने अब्बू का क्रेडिट कार्ड उन्हें वापस किया था क्योंकि अब मैंने एक और उल्लू पकड़ लिया है, उसके पास भी क्रेडिट कार्ड होगा। तो मुझे जमीने का नाम उसका वो अंदाज और मासूमियत बड़ी पसंद आई। अगर मेरे जैसा कोई लालची होता तो कहता कि एक ये भी मैं रख लेता हूँ और एक दूसरा भी मिल जाएगा, अब्बू ने क्या कहना है। मैं आप और आपके लिए, अपने लिए ये तजवीज पेश करूंगा कि डिप्रेशन के मर्ज की किसी और तरह से गर्दन नहीं नापी जा सकती मां सिवा इसके कि आप इसकी आंखों में आंखें डाल के दो अदद बोंगियां जब तक ना मारें। इन बोंगियों से डिप्रेशन दूर भागता है। संजीदगी को अगर गले का हार बनाएंगे तो जान नहीं छूटेगी। हम इस आरजू के साथ कि सारी दुनिया और बिलखसूस मेरे मुल्क के लोगों को अल्लाह आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, अल्लाह हाफिज। जी हाँ सामीन कराम, ये था अशफाक अहमद साहब का आज का जाविया जो हमने आपके गोश गुजार किया कि बोंगियां मारे खुश रहें। और जमीनी कराम अगर गौर कीजिए, हमने तो अभी बस थोड़ा सा सोचा है इस बारे में, ज़्यादा गौर करेंगे जब फुर्सत होगी, कि इंसान जो अपने आप को हमेशा वो चाहता है कि जी लोग उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उसको बड़ा अक्लमंद समझें, उसको बहुत ही जीरक समझें, उसको बड़ा संजीदा शख्स समझें, और इसीलिए हमने अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ रखा होता है कि जी हम तो फलां हैं, हम तो फलां तोप चीज़ हैं, हमने तो कभी ऐसी फालतू बात नहीं की, कभी बोंगी नहीं मारी, कभी बेवकूफ़ी वाली बात जिसे कहते हैं ना वो नहीं की। और ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि इससे जो है हमें बड़ी इज्जत मिलेगी, हमारा बड़ा एहतराम होगा, लोग हमें अक्लमंद समझेंगे, लोग हमें बड़ा पढ़ा लिखा समझेंगे। ये हकीकत है, कभी गौर कीजिएगा आप आज बैठ के। और इसी वजह से समीन कराम, इसी वजह से हम ये समझते हैं कि फिर इंसान के वो जो अंदर की, ये जो अभी अशफाक अहमद साहब मासूमियत की बात कर रहे थे, हम उससे बहुत दूर हो गए। वो मासूमियत बेचारी, उसका हमने गला जिसे कहते हैं ना घोंट दिया, इसलिए कि हर वक्त हम लबादा ओढ़े रखते हैं, अपने पढ़े लिखे होने का सबूत फराहम करना होता है हमें। हमारा कॉल, हमारा फेल, हमारा किरदार जो है हम हरगिज़ नहीं चाहते। माँ सिवा कभी होता है कि जी हाँ आपके दोस्त ऐसे हों बहुत करीबी जो आप के बड़े क्लोज हैं, जिनसे आप बेतकल्लुफ़ होते हैं, आप उस वक्त बैठ के तो कुछ भी जो मुंह में आए, जो जी में आए आप कह देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि आपको जज किया जाएगा। ये जो जजमेंट का आंसर है ना, एलिमेंट, इसने हमारी जिंदगी को ना बहुत कह लीजिए कि संजीदा बना दिया, इसने बहुत हमें साथ पर्दों में लपेट के रख दिया। हमारी असल शख्सियत जो है वो कहीं अंदर छुप के रह गई है, और यह हकीकत है। आज सोचिएगा, वो लोग जिन्हें हम कहते हैं जी ये फलां कितना बेवकूफ है, फलां तो बड़ा सादा है, तो उनकी वो सादगी, वो बेवकूफ़ी, उनका बड़ा खूबसूरत एक हुस्न है उनकी पर्सनालिटी का, उनकी शख्सियत का। लेकिन क्योंकि हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि हम ज़रा सी भी बेवकूफ़ी को, ज़रा सी भी सादगी को पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं हर शख्स जनाब इंटेलेक्चुअल हो, हर शख्स जो है वो बड़ा ही सूझबूझ वाला हो, बड़ा सोच समझ के बातचीत करने वाला हो। किस लिए, क्यों? ठीक है, कुछ जगह होती हैं, कुछ ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे आप बेवकूफ़ी वाली बातें करेंगे तो वाकई ना बेवकूफ़ लगेंगे, लेकिन हर वक्त हर जगह ऐसी नहीं होती है। आप घर में हैं, आप अपने सही असल हुलिये में रहिए, आप अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के जो करीबी बहुत लोग हैं, जो इमीडिएट फैमिली जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ कभी कभार बोंगी मार देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना कि जी ये शख्स बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये तो बड़ा सूझबूझ वाला है, ये तो बड़ा संजीदा मिजाज है, ये तो पढ़े लिखे हैं। तो हम दरअसल वो जो अपनी डिग्रियां अगर ले रखी हैं उन्हें हर वक्त शो करते रहते हैं, क्योंकि डिग्री तो हाथ में लेके हम घूम नहीं सकते, तो हम अपनी शख्सियत पे उस डिग्री को तारी कर लेते हैं। ये हमारा ज़ाती ख्याल है, आप इससे मुत्तफिक हों या आप इससे ना मुत्तफिक हों, ये आपकी अपनी राय है, और हर एक को हक हासिल है कि वो अपने बारे में अपने हिसाब से सोचे या लोगों के बारे में, लेकिन जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जब किसी ने अगर हल्की फुल्की गलती कर दी, कोई ऐसी बात कह दी कि जिससे हंसी आ जाती है, तो माफ़ कर देना चाहिए ना, बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई ऐसा शख्स भी दुनिया में है जो ओरिजिनल है, जो जेन्युइन है। ये बात हकीकत है। कोई देखिए, दो तरह के दुनिया में लोग होते हैं, एक होते हैं बुकिश जो होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं कि जो जिनके पास बड़ा किताबी इल्म होता है, उनके पास बड़ी मालूमात का ख़जाना होता है, और पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियां ली होती हैं, डिग्री याफ्ता होते हैं, ठीक है ना। एक वो होते हैं जो स्ट्रीट क्लेवर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कि जिन्होंने डिग्रियां तो उनके पास नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी में उनके साथ हालात वाकयात ऐसे गुजरते हैं कि जिंदगी बजाते खुद आपको इल्म है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है और वो बड़े सबक सिखाती है आपको, तो आप संजीदा मिजाज हो जाते हैं, चीज़ों को लोगों को समझने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बस अपनी दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं, वो यकीन कीजिए वो ज़्यादा मस्त रहते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं, इसलिए कि उन्हें ये फिक्र नहीं होती और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, फलां हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, हमें ये बात कहनी चाहिए, ये नहीं कहनी चाहिए, यानी हर चीज़ उनकी बस वो सोच समझ के प्लानिंग के तहत नहीं होती। वो कुछ हम कहते हैं ना अटकल पच्चू जैसे कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं अपनी मासूमियत में, तो उन लोगों में मासूमियत मौजूद होती है और यह मासूमियत तो बहुत बड़ी चीज़ है। बल्कि हकीकत पूछिए तो वो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते जो अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं और वो लगता है कि जी ये इनमें तो किसी बड़े बाबे की रूह है। बेशक उनको इल्म होता है, बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, लेकिन बच्चे क्यों पसंद होते हैं लोगों को, इसीलिए कि वो मासूम होते हैं। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो वो जो बात उनके अंदर होती है वो बाहर आ जाती है ज़बान पे, इसीलिए सबको बच्चे पसंद आते हैं क्योंकि वो मासूमियत होती है, वो फरिश्ते, इसीलिए उन्हें कहा जाता है। तो सामीन कराम इस बारे में सोचिएगा, बाज़ औक़ात बोंगिया मारना अच्छा होता है, दो चार दोस्त अहबाब अगर मिलते हैं और आप जो भी जी में आए अपनी बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए उनके साथ, हल्की फुल्की बातें कीजिए, वहाँ पे आप अपनी डिग्रियों को शो ना करें और ना वो लोग आपको जज करें कि जी आप कितने पानी में हैं और कितना आपका इल्म है और कितने आप आलिम फाजिल हैं, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ी आसान हो जाती है और डिप्रेशन भी इसी तरह से जाता है। जब आप खुल के हंसते हैं ना, आपके आपकी ज़हनी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत दोनों मजबूत होती हैं, फ्रेश एयर आपके लंग्स में जाती है, आपके लंग्स मजबूत होते हैं, आप का जहन मजीद पुरसकून होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पते की चीज़ें हैं। लोगों का खौफ इतना दिल में मत रखिए, अल्लाह की मोहब्बत रखिए। हाँ, अल्लाह नाराज़ ना हो, ऐसा कुछ ना हो जाए हमसे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो, बाकी सब खैर ही खैर है, वो खुश है तो दुनिया खुश है। दुनिया की इतनी परवाह मत कीजिए, हमने दुनिया को हवा बना के ना अपने सर पे सवार कर रखा है और हर वक्त हम पॉइंट्स स्कोर करने के चक्कर में जो रहते हैं ना, उसने हमारी जिंदगियों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है और इसी वजह से हमारे यहाँ कह लीजिए कि डिप्रेशन का हमें सामना करना पड़ता है। तो बस बहरहाल ये आज का जाविया नज़र था, इसको जहन में रखिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। और अब हमने वक्त देखा तो गीत हम लगा नहीं सकते क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का वक्त बहुत करीब है, काटना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ी बातचीत आपसे और कर लें और उसके बाद जो गीत पेश किया जाएगा आफताब साहब आपके लिए पेश किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया जनाब तुफैल साहब, आप शामिल हुए, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और जरका साहिबा आपके लिए खूबसूरत सा गीत हम लगाएंगे क्योंकि हमें इल्म है कि आपने बड़ी दफ़ा कोशिश की लेकिन लाइन गो थ्रू नहीं हुई आपकी, लेकिन आपकी मौजूदगी हम तक पहुंच गई, हमें इल्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके पैगाम का, बहुत नवाजिश। तो प्रोग्राम में शामिल रहिए, प्रोग्राम को सुनते रहिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को 1413 AM पे आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी उस्मा अशफाक के हमरा।
1: कम्युनिटी रेडियो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM DAB+ मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
9: safewayrider.co.UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: जी माजी सामीने कराम, इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। साथ ही साथ आप ये नशियात सुन रहे हैं पूरी दुनिया में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए यह आवाज़ आप तक पहुंच रही है, और जो हमारा स्मार्ट ऐप है, मोबाइल ऐप, उसके जरिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फंदोज होते हैं। और आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक। जी सामीन कराम, क्या कहते हैं कि अब आपने अशफाक अहमद साहब का जाविया भी सुन लिया, आपने साथ ही साथ क्या किया, कुछ शेर शायरी हमने आपके गोश गुजार की, आपने वो भी समाप्त फरमाई, कुछ खूबसूरत गीत हमने आपके लिए पेश किए, और आने वाला जो गीत है वो भी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, और जरका साहिबा ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए होगा। उससे पहले शाइस्ता मुफ्ती की लिखी हुई एक खूबसूरत सी नज्म आपके गोश गुजार हम करते हैं, और फिर तारीखी वाक्या जो है आज का वो भी हम आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे, आपके गोश गुजार करेंगे। शाइस्ता मुफ्ती लिखती हैं, दिले तन्हा नन्ना मुन्ना सा एक हसी बच्चा, नन्ना मुन्ना सा एक हसी बच्चा बीच चौराहे पे खड़ा होगा, भूलकर रास्ता नशीमन का आशियाने को ढूंढता होगा। नन्ना मुन्ना सा एक हसी बच्चा बीच चौराहे पे खड़ा होगा, भूलकर रास्ता नशीमन का आशियाने को ढूंढता होगा। भीड़ में अजनबी से चेहरों में एक शनासा को ढूंढता होगा, मैंने चाहा बहुत कि रोकूं उसे, मैंने चाहा बहुत कि रोकूं उसे, पास बिठलाऊं और पूछूं उसे اتنی کچی سی عمر میں تو نے اس قدر وحشتوں کو کیوں پالا؟ میں نے چاہا بہت کہ روکوں اسے، پاس بٹھلاؤں اور پوچھوں اسے، اتنی کچی سی عمر میں تو نے اس قدر وحشتوں کو کیوں پالا، زیست کو منتشر بنا ڈالا؟ اس کی افسردگی پہ دکھ ہے مجھے، اس کی افسردگی پہ دکھ ہے مجھے، اس کی دیوانگی پہ دکھ ہے مجھے۔ مجھ سے کہتا ہے وہ حسین بچہ، مجھ سے کہتا ہے وہ حسین بچہ، میں تو کچھ مانگتا نہیں رب سے، ہوں میں تنہا یہاں وہاں کب سے، ساتھ تھی ماں ابھی ابھی میرے، ایک آسیب کی طرح کب سے۔ اس کی افسردگی پہ دکھ ہے مجھے، اس کی دیوانگی پہ دکھ ہے مجھے، مجھ سے کہتا ہے وہ حسین بچہ، میں تو کچھ مانگتا نہیں رب سے، ہوں میں تنہا یہاں وہاں کب سے، ساتھ تھی ماں ابھی ابھی میرے، ایک آسیب کی طرح کب سے، سوچتا ہوں کہ اب کدھر جاؤں، اس کو ڈھونڈوں کہ خود بکھر جاؤں۔

अपने ही हिसाब से चीज़ों को, उसका अपना ही एक पलड़ा होता है, एक वो क्या कहिए तराजू होता है, जिसकी कसौटी में वो लोगों को परखता है, तोलता है उनको, अब कौन कितना सही कौन कितना गलत है। वैसे तो हकीकतन ये ऊपर वाला ही बैठा जाने कि कौन कितना सही और कितना गलत है, हाँ, लेकिन जो उसका कॉल है ऊपर वाले का, जो उसके महबूब उसके हबीब का कॉल है, उसमें तो सही गलत की बात अल्लाह माफ़ फरमाए हो ही नहीं सकती। वो तो सरासर सच है, सरासर हक है। ये हमारी बातें होती हैं, ये हमारे तसव्वुरात होते हैं, हमारे ख्यालात या नज़रियात कह लीजिए, कि जो हम पेश करते हैं, और ज़रूरी नहीं है, अगर तो वो माशरे की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप कह लीजिए असूलों जवाबित होते हैं, कवानीन कायदे होते हैं, अगर तो उनके हिसाब से वो बातें हैं फिर तो वो सही हैं, लेकिन अगर वो उनके उनसे हट के हैं तो फिर जाहिर है कि वो अक्सर लोग उनसे मुत्तफिक नहीं होते। और कुछ बातें होती हैं कवानीन के हिसाब से, उनमें तो ठीक है, एक कानून की किताब है, उसमें जो बात सही है वो सही है, उससे मुताबिकत रखती है, वरना वो गलत है। लेकिन कुछ होते हैं हमारे अपने नज़रियात, हमारे अपने ख्यालात, और वो हम अपने हिसाब से ही सोचते और कह लीजिए कि देखते हैं कि वो किस तरह से हैं, वो क्या हैं, उनको हम अपने हिसाब से ही देखते हैं। लीजिए, बहरहाल ख्यालात नज़रियात एहसास सबके मुख्तलिफ होते हैं, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, 100% कोई सही भी नहीं होता, 100% कोई गलत भी नहीं होता। चीज़ों को परखने का, चीज़ों को परसीव करने का अपना अपना जाविया नज़र होता है, तो ठीक है, हर एक समझता है कि वही सही है, दूसरे गलत हैं, लेकिन जब भी आप किसी नज़रिए को, किसी बात को सही और गलत के पलड़े में अगर तोलना चाहते हैं, उस तराजू में रख के, तो फिर जहन और दिल थोड़ा सा खुला करके अगले की बात पूरी सुननी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद फिर फैसला करना चाहिए कि हाँ भाई, कितनी ये बात सही है या कितनी ये बात किसी ने गलत कही। चलिए, सही गलत के चक्कर से निकलते हैं, और फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत सा पुराना सा एक गीत है, आप तमाम सुनने वालों के गोश गुजार करते हैं, जो इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात समात फरमा रहे हैं 1413 AM पे ऑनलाइन या अपने मोबाइल के जरिए। लीजिए, सुनिएगा।

0: बिंदु, यहाँ दाल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
0: अरे ये यही तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: I don't believe it, it's impossible. You have to believe it. चलो मेरे साथ।

जी समीने कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना। और अगर आपने ये फिल्म देखी हो, पड़ोसन पुरानी फिल्म है, तो बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अगर कभी आपका दिल चाहे कि आप हल्की फुल्की कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिससे आपको बहुत हंसी आए, आपको अच्छा लगे, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, पड़ोसन। पुरानी फिल्म है, सुनील दत्त की और सायरा बानो उनकी ये फिल्म है। और बहुत ही बड़े नेचुरल से अंदाज में इस फिल्म को फिल्माया गया है, बड़े कुदरती तरीके से। बनावट नहीं लगती, एक्टिंग एक्टिंग नहीं लगती। यही किसी एक्टर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो जो भी किरदार निभाता है, जो किरदार उसको दिया जाता है, वो इतना डूब के उसमें उसको पर्दे पे लेके आता है कि लगता है कि असल में, हकीकत में, यही जो शख्स है ना, ये ऐसा ही है जैसा कि दिखाया गया है। तो बहरहाल, आपने गीत जो है, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। गीत आपके लिए पेश किया गया ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से। और आपसे हमने बताया, आपको टेलीफोन नंबर 01274-3066-77, ये हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है। आप इसके ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लाइंस आपके लिए ओपन हैं। जिन हजरात, ख़वातीनों हजरात ने फ़ोन किया, उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। समीरा साहिबा, जनाब इकबाल साहब, आप बल्कि दो मरतबा तशरीफ़ लाए। आफ्ताब साहब, आप तशरीफ़ लाए। तुफैल साहब, आपने फ़ोन किया, प्रोग्राम में शिरकत की, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लीजिए, अब एक और क्या किया जाए, खूबसूरत सा गीत आपको सुनाया जाए। लेकिन उससे पहले सामीने कराम, ये जो बुद्धिज़्म है एक अलहदा से, उसमें लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है, वो ये कहते हैं कि बिफोर यू आर्ग्यू विद समवन, आस्क योर सेल्फ। बिफोर यू आर्ग्यू विद समवन, आस्क योर सेल्फ, इज दिस पर्सन मेंटली मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट perspectives and opinions. If not, there is no point to argue. ये उन लोगों का कहना है कि अगर आप किसी के साथ बहस करना चाहते हैं, बहस मुबाहिसे में डिस्कशन करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं, तो हमेशा सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आया जिस शख्स से आप बहस मुबाहिसा करना चाह रहे हैं, वो इस काबिल है, वो जहनी तौर पर इतना मेच्योर इनफ है कि वो मुख्तलिफ जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, और उनकी जो लोगों के डिफरेंट, जो बात अभी समीने कराम हमने थोड़ी देर पहले आपसे कही कि हर शख्स का नज़रिया मुख्तलिफ होता है, हर शख्स का नुक्ता नज़र जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज़ को परसीव करने का एक तरीका लोगों का मुख्तलिफ होता है। और वो किस वजह से होता है, वो जितना इंसान की तालीम होती है, जो उसकी तरबियत होती है, बचपन में की गई होती है, जिस माहौल में वो पला बड़ा होता है ना, वो चीज़ें बहुत असरअंदाज होती हैं, उनका बहुत इफ़ेक्ट होता है इंसान की शख्सियत पे। और तभी फिर इंसान निखर के, वो तराश खराश के बाद इंसान एक भरपूर शख्सियत बन के सामने जब आता है। देख लीजिए, उनका कहना यह है कि कभी उस शख्स से बहस मत कीजिए जो जहनी तौर पर इतना मैच्योर नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात, जो एहसासात हैं, उनमें फ़र्क महसूस कर सके और उनके फ़र्क को समझ सके। इस देखिए, फिर फ़ायदा नहीं होता। देखिए, एक बायस इंसान है ना, जिसने पहले से ये जहन बना रखा हो कि हाँ जी, फ़लाँ चीज़ ऐसे है या फ़लाँ चीज़ का ये हिसाब किताब है, उनका अपना नुक्ता नज़र, फिर वो उससे हटते नहीं हैं। जो बायस शख्स है ना, वो समझता है कि बस 100% वही दुरुस्त है, वो दूसरे की बात अगर सुन भी लेता है ना, यानी कानों तक तो वो आवाज़ पहुंचती है, लेकिन अपने जहन और अपने दिल की खिड़कियां चूंकि उसने बंद कर रखी हैं दरवाजे, तो वो आवाज़ उसके जहन और उसके दिल तक नहीं पहुंच पाती। खाली अल्फाज टकराते रहते हैं उसके कान के पर्दे से, तो फिर इंसान फिर ये भी सोच नहीं सकता, उसकी सलाहियत, कहते हैं ना, मुंजमिद हो जाती है, फ्रीज हो जाती है कि वो उस चीज़ को उस तरीके से ले सके, देखे। देखिए, बात हमेशा दूसरे की ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी किसी का नुक्ता नज़र है, जो भी किसी का नज़रिया है, जो भी ख्याल है किसी एक चीज़ के बारे में, दूसरे शख्स का मुख्तलिफ होगा, आपका मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आपकी तालीम और तरबियत मुख्तलिफ है, दूसरे शख्स की मुख्तलिफ है, आपके पास इल्म ज़्यादा है या कम है, या दूसरे के पास ज़्यादा या कम है, कभी भी दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। हाँ, जो आफाकी सच्चाइयाँ हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे दूसरी बात हो रही है कि आप किसी चीज़ को परसीव कैसे करते हैं, आपके जहन में उसकी क्या सूरत नज़र आती है, उभरती है।
دوسروں کی رائے کا بھی احترام جب انسان کرتے ہوئے اور اس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں بھائی دوسرے کی بات سن لینی چاہیے, اس کے بعد پھر سوچنا چاہیے, پرکھنا چاہیے اس بات کو, اور آخر میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. لیکن ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے عموماً کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم صحیح ہیں اور دوسرا ہر شخص غلط ہے. تو یہ بذات خود یہ نظریہ اور بذات خود یہ رویہ جو ہے یہ بہت غلط ہے. وہ جو پہلے ہم نے ایک غزل پڑھی تھی کہ لکھا گیا غلط مجھے سمجھا گیا غلط, تو وہ عکاسی کرتا تھا اسی چیز کی. تو چلیے بہرحال اب یہ چلتے ہیں اگلے خوبصورت سے گیت کی جانب, پیش کریں گے آپ تمام سننے والوں کے لیے جو اس وقت بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیجیے سنیے گا.

0: इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप फिर प्रोग्राम में शामिल हुए और बड़ी आपने तारीफ और तौसीफ की, खसूसन आपकी भाभी साहिबा ने, तो उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े अलकाबात से नवाजते हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने इल्म दे रखा है, ये जो थोड़ी बहुत इज्जत जो अल्लाह ताला ने अता की है, या आप जैसे लोगों की बदौलत है, आप लोग नवाजते हैं, उस इज्जत से अल्लाह का एहसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हमेशा हम तो यही कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन हैं जिनकी तरबियत है, जिनकी दुआ होती है, और वो जो टीचर्स, जो असातिज़ा मिलते हैं इंसान को, जो पत्थर को हीरा बना सकते हैं, जो तराशते खराशते हैं। अच्छे टीचर मिल जाना ये भी बड़ी किस्मत की बात होती है, अच्छी किस्मत हो तो ज़रूर ऐसा होता है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी इकबाल साहब, आपने जो बात कही कि जी आजकल ये जो रिश्ते हो रहे हैं और कुछ अरसे के बाद बड़ी जल्दी वो टूट जाते हैं, क्योंकि पहले से शादी कर रखी होती है और उसके बाद वो शादी के वक्त तो बताते नहीं, फिर वो बाद में क्या है कि कुछ अरसे के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो बात सारी बर्दाश्त की है। और उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि बात नीयत की होती है। पहले ये होता था, ये सोच होती थी, खा वो लड़का है खा वो लड़की है। अब फिर वही बात आ गई कि इससे ज़रूरी नहीं कि आप हमारी इस बात से इत्तफाक करें, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना नुक्ता नज़र है। हम अपना नुक्ता नज़र आप से शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, नीयत होती थी कि जी जिससे शादी हो रही है ना, ज़िंदगी भर का ये साथ है, मरते दम तक इसको निभाना है, खा वो शौहर होता था या बीवी होती थी। इस हिसाब से, इस सोच के साथ लोग शादी के लिए करते हाँ करते थे और फिर उसको निभाने की भरपूर कोशिश भी करते थे। लेकिन और दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि बर्दाश्त होती थी, छोटी मोटी बात हो भी गई, कोई ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए, किस में नहीं होते, किस घर में नहीं होते, लेकिन बात बर्दाश्त की होती है कि छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। घर ऐसे नहीं बनते, घर बनाने बहुत मुश्किल होता है काम। हाँ, घर तोड़ना बहुत आसान है, आप कोई भी ऐसी बात कर दीजिए जिससे दूसरे बंदे को गुस्सा आए या फ्लेयर अप हो जाए वो, और अगर उसका मिजाज है भी ऐसा गर्म मिजाज, तो फिर तो मिनट नहीं लगते और घर टूट जाते हैं, बल्कि सेकंड्स में टूट जाते हैं। आजकल दरअसल हमारी अप्रोच बहुत गलत हो गई है। हम ये सोचते हैं हाँ ठीक है जी, शादी कर रहे हैं, निभ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं निभी तो कोई मसला नहीं, हमें भी कोई और मिल जाएगा, उनको भी कोई और मिल जाएगी। तो ये सोच बड़ी गलत है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और फिर ये सोच जो है, ये आपकी तालीम, आपकी तरबियत से आती है, जो वालिदैन घर में सिखाते हैं, जो आपका माहौल होता है उससे इंसान ये सीखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दीन को अगर नहीं समझते, अगर आपको नहीं मालूम कि अल्लाह का हुक्म क्या है, ये जो निकाह होता है ना, ये एक बाकायदा एग्रीमेंट होता है सारी ज़िंदगी के लिए, ये बस ऐसे ही चीज़ नहीं है कि, और लोग तो निकाह नामे को सही मानों में पूरा पढ़ते भी नहीं, बस सिर्फ वो कबूल है कबूल है कबूल है कह दिया साइन कर दिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग वो देख लेते हैं जी हक महर कितना रखना है या कितना होगा। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी बात जो है वो ना तो डिस्कस की जाती है, बयान की जाती है, ना बताया जाता है, बहुत सी चीज़ें छुपा ली जाती हैं, तहकीक भी नहीं होती। तो जब हम इस चीज़ को इतना वो मजाक की सूरत में उस तरह से लेंगे, तो फिर उसके कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस या आफ्टर इफेक्ट्स, वो इस तरह से बुरे ही निकलेंगे। तो याद रखिए, ये जो निकाह नामा है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसको बहुत सोच समझ के, बहुत पढ़ के, बहुत तहकीक करके और बातें डिस्कस करके आपस में दोनों पार्टीज जो होती हैं, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों की फैमिलीज की तरफ से होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक लड़की लड़का है बस उन्होंने ज़िंदगी अकेले गुजारनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत हद तक ऐसा हो रहा है, हम ये बात समझते हैं इस बात को भी, या बैक होम को भी देखा जाए, पाकिस्तान इंडिया वहाँ पर भी अब ये चीज़ें चल पड़ी हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये चीज़ें कोई इतनी अच्छी नहीं हैं। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, जो पुरानी सोच थी वही अच्छी थी। बहरहाल वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, बात करेंगे बाद में इस पे, फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सुनते रहिए आप ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की नशिया।
1: कम्युनिटी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 14 30 07800

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडिया वेव पर यॉर्कशायर के ससीन वा। ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 14

नामों से पुकारते हैं, कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी वक्त, किसी भी लहजा, किसी भी आन, किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सबका रब है, वो हम सबका रब्बुल आलमी है।

आप सुनाइए, हमारे यहाँ मौसम का अहवाल कुछ यूँ है और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, नज़ला एक मरतबा फिर थोड़ा सा तंग कर रहा है। कुछ बेहतर हुआ था आज, फिर मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम रात को कुछ होता है, सुबह कुछ और तब्दील हो जाता है। आज सुबह से मौसम का अहवाल ये है कि धूप और छाँव का खेल जारी है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन बारिश का खदशा भी जाहिर किया गया है। साथ ही साथ मौसम का अहवाल यह है, अभी जब मैं प्रोग्राम करने आ रहा था तो तकरीबन 14 सेंटीग्रेड था या 14 सेल्सियस था, और महकमा मौसमियात का कहना यह है कि टेम्परेचर 17 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक जा सकता है। आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी आमद के साथ ही मेरे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और हम वो मेहमान जो हमारी बज़्म में तशरीफ़ ले आते हैं उनका तारुफ कराते हैं एक हसीन गीत के तोहफे के बाद, और वो गीत हम किया करते हैं अपने उन मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और हमसे और हमारे प्रोग्राम से चाहत रखने वालों के नाम, जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाकर इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं और वो तोहफा पेश करते हैं जो हम अपने तमाम सामीन नाजरीन के नाम और अपने सोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स के नाम जो ऑनलाइन हमें दुनिया के चार कोनों में सुन रहे हैं। हवाओं में ज़रा शिद्दत आ गई है, आपको आ रही होगी आवाज़, मैंने दरवाज़ा भी खोल रखा है और खिड़की भी ताकि ज़रा फ्रेश रहे मामला, और चलते हैं आगाज़ करते हैं आज की गज़ल उसने छेड़ी का। आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम।

0: रिजवान हम इसे चेक करेंगे, अगर ये दो मुख्तलिफ फनकारों ने गाया है तो हम जरूर इसे शामिल प्रोग्राम करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है एक शायर एक गीत दो फनकार, इसके लिए गीत मुंतखब किया है परदेसी मजीद ने और खाड़ियां गुजरात से, जिसे हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और ये मैं देखता हूँ, मेरा इरादा तो ये था कि आज हम इस सेगमेंट का आखिरी प्रोग्राम पेश करें, लेकिन अगर आपने जो गीत लिखा है ये दो मुख्तलिफ फनकारों की आवाज़ में मौजूद हुआ तो हम ज़रूर शामिल प्रोग्राम इसे कल करके और फिर हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। एक शायर एक गीत दो फनकार अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कोई खूबसूरत नया सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। सो रिजवान मियां जीते रहिए, आपका तोहफा फूलों का हसीन गुलदस्ता यहाँ सज चुका है और उसकी महक से स्टूडियो महक रहा है। जो गीत आपने एक शायर एक गीत दो फनकार के लिए भेजा है वो भी हम चेक कर लेंगे। बसूरत दीगर हमारा ये मैं अभी चेक कर लूँगा थोड़ी देर बाद, और बसूरत दीगर आज हमारा ये सेगमेंट आखिरी होगा 3 बजे के कमर्शल्स के बाद। एक शायर एक गीत दो फनकार, बढ़ते हैं कमर्शल के वक्फे की जानिब। ये याद दिलाते हुए कि आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कमर्शियल के बाद। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड या वेल्स में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में तशरीफ लाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे। मौसम का जिक्र मैं करता हूँ आगाज प्रोग्राम में तो उसका भी जवाब मौजूद है यहाँ पर। रिजवान साहब ने कहा है कि दिन में गर्मी हो जाती है और रात को ठंडक हो जाती है, तो कराची की खासियत है। और हमारे परदेसी मजीद साहब ने कहा है कि साहब कहाँ गए मैं देख के बताता हूँ, लिखा हुआ है बहरहाल उन्होंने ये लिखा था कि जी यहाँ गर्मी बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमर्शियल सुनते हैं, और कमर्शियल के बाद हम आपको लिए चलेंगे वेकफील्ड जहां वकार मियां निकलने की तैयारी किए बैठे हैं।
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं ज्यादा दूर नहीं, ये वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर वकार मियां। और वकार मियां वेल्स निकलने की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि बस अपना ये गीत सुनेंगे और उतना वक्त हम अपने अहले खाना के हमराह मौजूद रहेंगे और फिर उसके बाद हम रखते सफर बांधेंगे। वकार, ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि आप इस कदर बाकायदगी से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाकर इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा नजर बद से बचाए। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। परदेसी मजीद साहब, आपका गीत लिख लिया है, जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे, इंतजार फरमाइए। अभी तो हम चल रहे हैं वेकफील्ड और वकार मियां को रुख्सत करते हैं उनके गीत के तोहफे के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लिए चल रहे हैं खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान, जहां से मौजूद हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर। नाम है उनका परदेसी मजी साहब, और आपने हमेशा की तरह बेइंतहा खूबसूरत पैगाम अपने चाहने वालों के नाम भेजा है। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम और ढेरों दुआएं। शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब और नवीद साहब को भी मेरा सलाम, और खालिद साहब को भी मेरा सलाम और ढेरों दुआएं। आपके लिए खुसूसी दुआएं मांगता हूं। जीते रहिए, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। हम आपको दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं, और आज हमारा जो आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है एक शायर एक फनकार नहीं बल्कि एक शायर एक गीत दो फनकार। आपका पसंदीदा मुंतखब करदा गीत आज हम उसमें शामिल कर रहे हैं। परदेसी मजीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी मुझे एक गीत तहरीर किया था जनाब रिजवान साहब ने, मैंने उनसे कहा था कि अगर ये दो आवाज़ों में होगा तो हम इसे एक्सटेंड करके कल ख़त्म करेंगे, लेकिन मैंने अभी देखा है कि वो दो आवाज़ों में नहीं है। बहरहाल और मज़ीद जाके मैं घर पर चेक कर लूँगा, अगर मुमकिन हुआ और दो आवाज़ों में से मैंने महसूस किया तो कल हम एक्सटेंड एक दिन के लिए एक शायर एक गीत और दो फनकार कर देंगे। बसूरत दीगर ये आज इस सेगमेंट का आखिरी गीत होगा जिसे मंतखब किया है परदेसी मजीद साहब ने। खैर, अब चलते हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है परदेसी मजीद साहब ने, और कहते हैं कि ये गीत मुझे बेइंतहा पसंद है। अरे साहब, आपको ही नहीं, मलका तरन्नुम नूजहां का ये गीत लाखों दिलों में आज तक शहद उंडेलता है। गीत ही इतना खूबसूरत है। हाजिर है, कबूल कीजिए। आमद का बहुत शुक्रिया।

और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर लीच, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम लिसनर जनाबे भगत सिंह साहब, और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है। सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत, और कह रहे थे कि रिफत भाई कभी हमारे लिए भी कोई शेर पढ़ दिया कीजिए। यार ये तो कोई बात ही ना हुई, आप कहें और हम ना पढ़ें। एक बहुत खूबसूरत शेर है जो गीत आपने मुंतखब किया है उसके हवाले से कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और तोहफा हाजिर है, आमद का बहुत शुक्रिया भगत सिंह, आपकी आमद हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए बाई से मुसर्रत हुआ करती है।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। अभी मेरी बात हो रही थी शकील साहब से, जिनका कहना यह है कि पिछले पूरे हफ्ते से फोन आपका बहुत तंग कर रहा है। अभी भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे जब मैसेज दिया कि आपका फोन के थ्रू कॉल थ्रू नहीं हो रही है, कुछ कॉल्स मैंने रिसीव की हैं और कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने उनके ज़रा कान मरोड़े और फिर अभी मेरी शकील भाई से बात हुई और उन्होंने बे इंतहा खूबसूरत गज़ल की निशानदेही की है जो हम इंशाल्लाह शामिल प्रोग्राम करेंगे। और कमर्शियल के वक्फे के बाद हमारा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार, जिसका गीत मुंतखब किया है खारियाँ गुजरात से परदेसी मजीद साहब ने, उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। और हम देखते हैं ये गीत, फिर एक दूसरा गीत लिखा है रिजवान रिजवी और अम्बरीन ज़ाहरा ने, कि ये अगर नहीं हुआ है तो हम इसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे और हम अपने इस सेगमेंट को आज ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि आपके गीत को शामिल करने के बाद ख़त्म करेंगे अगर मौजूद है ये दो मुख्तलिफ फनकारों की आवाज़ों में। ठीक है, तो अब हम आपको याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। हमारा फ़ोन बिल्कुल सही काम कर रहा है 01274306677। शकील साहब शाह साहब से भी इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और वो बेहतर समझते हैं कि क्या इसका सलूशन होना चाहिए, क्योंकि बसा औकात बिल्कुल मेरे प्रोग्राम में अब इस वक्त क्लियर है बिल्कुल मामला, कोई कबाहत नहीं है। बस यह है कि जो टेलीफोन है उसका एक वायर कभी कभी लूज हो जाता है, जिसे हम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ पकड़ कर रखते हैं जब आपसे बात करते हैं, ताकि बदतमीजी ना करे, बिहेव कर जाता है। आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। और कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम अपने प्रोग्राम का वो सेगमेंट लेकर आएंगे जिसे हम आज करना चाहते हैं इख्तिताम पजीर, लेकिन अगर रिजवान रिजवी और इनका भेजा हुआ तोहफा हमें मिल गया तो हम इसे एक दिन एक्सटेंड करके कल हम इस सेगमेंट को इख्तिताम पर लेकर जाएंगे और उसके बाद कोई खूबसूरत नया सेगमेंट लेकर आऊँगा। अभी सोचा नहीं है, इसलिए इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते से कोई नया सेगमेंट आपकी नज़र किया जाएगा। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड या वेल्स में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे के बाद, मुलाकात होगी एक शायर एक गीत दो फनकार में।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आइए दोस्तों आगाज करते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट, नाम है जिसका एक शायर एक गीत दो फनकार। आज जो गीत मुंतखब किया है इसे मुंतखब किया है खाजियां गुजरात पाकिस्तान से जनाब परदेसी मजीद साहब ने। 1979 की एक फिल्म थी, नाम था उसका मंजिल, और उस फिल्म में हीरो थे अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने हीरोइन के फराइज़ अंजाम दिए थे। उस फिल्म का एक गीत मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा, जिसे तहरीर किया था युगेश ने। युगेश 2020 में हमारे साथ छोड़ गए, बेशुमार फिल्मों के गीत लिखे। उनके मकबूल गीतों में आपने सुना होगा कहीं दूर जब दिन ढल जाए, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, मिल्ली के तमाम खूबसूरत नगमात उन्होंने तहरीर किए थे। तो ये उनके एक शाहकार गीतों में से एक गीत था जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाकर अमर कर दिया। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं परदेसी मजीद साहब आपका कि आपने ये खूबसूरत गीत मुंतखब किया, और हो सकता है कि यह आज हमारा इस सेगमेंट का लास्ट प्रेजेंट हो, लेकिन अभी मैं ये देखूंगा कि आज रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात ने एक गीत लिखा है, अगर वो उस तरह मौजूद है तो इंशाल्लाह कल वो बजाकर हम इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। तो आइए 1977 की फिल्म मंजिले का गीत बोल योगेश के, मौसीकी आर डी बर्मन की, आवाज किशोर कुमार की, आप सबकी मोहब्बतों के नाम। तो आज के शायर योगेश, गीत जो पसंद किया है परदेसी मजीद साहब ने, रिम झिम गिरे सावन, मौसीकी आर डी बर्मन, कबूल कीजिए।
1: शिमारू के नए वीडियोस की

और दोस्तों इंशाल्लाह लास्ट सेगमेंट नहीं, इन्होंने दो गीत लिखे हैं तो दोनों में से कोई एक तो हम देखते हैं, अगर वो बजा नहीं है पहले और मौजूद है तो हम उसे जरूर कल शामिल प्रोग्राम करेंगे, वरना ये आज का लास्ट सेगमेंट होगा एक शायर एक गीत दो फनकार का। लेकिन हतमी ये नहीं है, अगर वो गीत जो हमें कराची से मौसूल हुए हैं जोड़ी की तरफ से अगर वो बजे नहीं हैं और हमारे पास मौजूद हैं तो हम जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। अभी हम चल रहे हैं उसी गीत की जानिब जिसे आज मुंतखब किया है परदेसी मजीद साहब ने, योगेश के बोल, मौसीकी आर डी बर्मन की, फिल्म का नाम मंजिले 1977 और तशरीफ ला रही हैं सुरों की देवी लता मंगेशकर।

और दोस्तों ये था आज का एक शायर एक गीत दो फनकार। फिल्म थी मंजिल 1979 की। आज के शायर थे योगेश, मौसीकार थे आरडी बर्मन और फनकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। कल इंशाल्लाह इस सेगमेंट का आखिरी तोहफा आपकी नज़र करेंगे। जो गीत मंतखब किया है वो मंतखब किया है हमारे बहुत ही खूबसूरत जोड़ी जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन ज़ाहरा ने। गीत कौन सा है इसके लिए कल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम चल रहे हैं उस तोहफे की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है मेरे खूबसूरत लिसनर और कॉलर शकील साहब ने बनले से, और ये खूबसूरत गजल सुनना चाहिए। लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया शकील भाई।

0: City Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679,
9: UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

दोस्तों ये पसंद थी रिजवान रिजवी, उनके शायकिया तमरीन जहरा की। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं लैया, गुजरात पाकिस्तान, जहां से मौजूद हैं हमारे हमरा, हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर जनाब नज़ीर अहमद साहब। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका मोहब्बत भरा सलाम हम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर चुके हैं। आपका तोहफा आपकी नज़र करने की इजाज़त चाहते हैं। आमद का बहुत शुक्रिया। सात समंदर पार से आपकी आमद भी हमारे प्रोग्राम के लिए बाइस तौकीर बनती है। तोहफा वसूल कीजिए।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम अगले तोहफे की जानिब बढ़े, रफाकत साहब हेलीफैक्स से हमारे हमराह मौजूद हैं और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम ही सामईन और नाजरीन की खिदमत में पेश किया है। आपका तोहफा, आपका पसंदीदा गीत हम पेश करेंगे अपनी खूबसूरत मेहमान को खुशामदीद कहने के बाद। तशरीफ लाई हैं हमारी शोख, चंचल, नटखट, शरीर, प्यारी सी बिटिया सरोज खालिद, जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ वालदा के रुख्सत होने के बाद वापस आ रही हैं। याद रहे कि सरोज खालिद हमारी बेइंतहा खूबसूरत लिसनर, जिनकी बाकायदगी से आमद हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाया करती थी, शाहिना जरी की छोटी साहबजादी हैं और उनकी चहेती भी थी। बरज़ाए इलाही वो इस जहां निफानी से हम सबको छोड़ के रुख्सत हुई, जिन्होंने सरोज की शख्सियत को बदल डाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब अपने प्यारों को उठा लेता है तो उनके प्यारों को सब्र भी अता फरमाता है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। कुछ सुनना चाहो सरोज बिटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। वैसे भी याद रखो कि जाने वालों के साथ कोई नहीं जाता, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। ये उसका बनाया हुआ एक सिलसिला है जो जारी और सारी है। अल्लाह की रजा जानकर इसे कबूल करो। कोई गीत सुनना हो तो हमें ज़रूर बताना। रफाकत, बहुत दिनों की गैर हाजिरी के बाद आप तशरीफ़ लाए हैं हेलीफैक्स से, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं एडम्बरा वाले रफाकत साहब भी जज्बाती होंगे और तशरीफ लाकर हमें शुक्रिया का मौका देंगे। वो भी बहुत दिनों से गैर हाजिर हैं। पेश कर रहे हैं आपकी पसंद। अल्लाह ताला रफाकत आपको और आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान, महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 on 1407 800.

0: by Nazar.
1: Ye Tha Jo by Nazim. I hope that you enjoyed that song. Or Sab Log Ka Din Kaise Guzar Raha Hai. We are ab ho gaya Monday shuru, week ka shuru hai. To studio na telephone number hai 01274306677. Aap call kar sakte ya bata sakte mujhe ke how you're doing. Acha to मेरा डे बहुत बिजी था. मैं अभी शॉपिंग गई थी. मैंने दो जोड़े लिए थे और थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग किया तो अच्छा था. और आप बताओ आपका दिन कैसा था. अच्छा नेक्स्ट मैं प्ले करूँगी एक गाना. ये है नौरा फतेही का गाना और ये है स्ले टू द रिदम और ये था वर्ल्ड कप में. तो आई होप यू लाइक दिस.
2: And you've all seen the controversy surrounding it.
1: Bye.

ये था तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये था एक क्लासिक सॉन्ग जो मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता, और ये आई होप कि आपने इन्जॉय किया है। और हाँ, आज का मौसम बहुत नाइस है, ऑटम हो गया, पर फील ही नहीं हो रहा कि ऑटम हो गया, और ऐसा लग रहा है समर ही है। मैं अभी हॉलीडे से आई थी मोरक्को से 3 दिन पहले, बहुत मज़ा आया था। एवरी डे हम ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज जूस पी रहे थे, फ्रेश पोमेग्रेनेट जूस, और बहुत मज़ा आया था, लाइक खाने में, एक्सप्लोरिंग करने में, अच्छा था। और आप भी बताओ, आपकी कोई हॉलीडेज वॉलीडेज है तो डू कॉल इन और टेक्स्ट, और अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो ज़रूर बता दें। तो नेक्स्ट मैं प्ले करूँगी एक गाना फ्रॉम डी जेनिक, इसका नाम है आदत।

0: DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: Assalamu alaikum. Aap sun rahe Bradford Asian Radio. It is currently 17:30 in the studio, and it's a Monday evening. So, sab log ka evening plan kya hai? Kya kya? कर रहे हैं। मैं अभी शाम की एक दावत में जा रही, तो मैं लीज जाऊंगी अम्मी के साथ, तो कोई मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती पर कुछ है, तो हम उधर जाएंगे, एंजॉय करेंगे और हाँ, आई होप आप भी अपना इवनिंग इंजॉय कर रहे हैं. क्या पका रहे सब लोग, कौन सी डिशेस है. एंड थैंक यू, मुझे एक कॉल आई थी, वो समरी वाज सेइंग दैट यू डूइंग अ गुड शो, सो थैंक यू फॉर दैट, रियली अप्रिशिएट इट. और नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले अ रीमिक्स ऑफ वो लम्हे बाय आतिफ असलम.

फ्रॉम तविंदर. आई होप के आपने इंजॉय किया. और नेक्स्ट मैं प्ले करूँगी पायल, ये है बाय यो यो हनी सिंह विद नौरा फतेहा. और मैंने पहले भी नौरा का गाना बजाया था. मैं बोल रही थी कि मैं अभी मोरक्को से आई हूँ 3 days ago, तो बहुत अच्छा था. और मैंने एक कफ्तान भी लिया जो मैं अभी पहन रही हूँ स्टूडियो में बैठ के, तो अच्छा लग रहा है. और मैंने और क्या लिया था, हाँ ऊद, अत्तर ऊद, ऐसी चीज़ें लिए थे. अरेबिया से बहुत नाइस होते हैं, तो ये लिया था. बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लिए थे, ऑब्वियसली डेट्स, और दूसरी चीज़ लाइक ऑलिव्स भी बहुत नाइस होते हैं उधर नॉर्थ अफ्रीका में, हॉट कंट्रीज़ में. तो या बहुत मज़ा आया था. और पाकिस्तान भी गई थी जनवरी.

मौसम भी हमेशा नाइस होता होता है, सब लोग को पता होता। फिर मैंगो सीजन को मैंने मिस कर दिया, तो मैंगोज नहीं मिले उस टाइम पर। चलो मैं प्ले करती, ये गाना है पायल।

0: Mika.
1: Ear catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
8: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला। 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें,

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio,
14: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम, मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मूत रिजवी।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

इतना बड़ा है दुनिया का घेरा, लोग दिलों से मिलते नहीं।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pesh khidmat hai Arabi mein hamd e bari ta'ala. Iska Urdu mein mafhoom is tarah se hai. Ae tamam bandon ke Rab, teri rahmat meri ummeed hai. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں، اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما۔

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम, मैं मूत्र रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत्र रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत्र रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत्र रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.